खुशी डोले वो दिल वाले खैर मना ले लहरा के बोले ये लंबी चोटी ना गिनती डोले वो दिल वाले खैर मना ले लहरा के बोले ओ लेकिन हम हैं वो दीवाने जो ना हार किसी से माने अपनी जिद है।

कंगना खना कुछ झुमेरे झुमके चले जो इतलाती राह में मार के तू ठुमके है कंगना खना कुछ झुमेरे झुमके चले जो इतलाती राह में मार के तू ठुमके। काम की बात कहूँ तू सुन ले, एक अच्छा सा साथी चुन ले, दुश्मन रूप के हजार

0: Sign up and win in our new platform, letsbetgy.com. Faster, more bets, and more options. Let's bet. This is the place.
1: माँ की बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट सारेगामा कारवां।

0: कंपनी का बॉस।
1: हाँ लगता है बॉस हमें टॉस करने वाला है।
0: अब क्या करें?
1: जो भी करेंगे एक साथ करेंगे।

कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना।

0: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
1: दोस्तों, अभी आपके सामने हमारे दोस्त श्री देवेंद्र दत्त अपना एक गीत पेश करेंगे।

दोस्तों अभी आपके सामने हमारे दोस्त श्री देवेंद्र दत्त अपना एक गीत पेश करेंगे।

इस चैनल पर ही है सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।